सुनने वालों एक मजे की बात सुनिए। एक रोमांटिक पिक्चर देखकर मैं घर आ रहा था। रास्ते में आर डी बर्मन का एक गाना गा रहा था कि अचानक वो मिल गई।